वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य

शायद गर्म हवा का एक झोंका था जो एक साल पहले यहीं से गुजरा था। जमी पर लिखी कुछ पुरानी कहानी मिटा गया, कुछ नई दास्ता लिख गया फलक में, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ करती थी। शायद गर्म हवा का एक झोंका था। आज भी हर सुबह सूरज चला आता है तेरे आंगन में रोशनी मांगने, बारिश आज भी गुनगुनाती है इन्हीं शीशों के मुंडेरों पर, रोज जहां तुम बैठते हो आज भी वक्त की शाख से टूटे शिकायतों की सूखी पत्तियां हटाकर दुआओं की ताजी पंखुड़ियां छोड़ जाते हैं आज भी। आज लोग कहते हैं तुम आराम कर रहे हो यहां, संगे मरमर की सफेद चादर ओढ़े तुम आराम कर रहे हो यहां। रातें आती हैं तो उसी पत्थर पर चांद पिघलकर यूं फैल जाता है जैसे जाड़े में ओस की बूंदे फूलों के दामन पर बैठ गए हो। आज भी वहीं बैठकर मैं सितारों के बीच खोई पगडंडी ढूंढता रहता हूं सपनों के शहर पहुंचने के लिए। आज भी जब तुम याद आते हो आंसू का दरिया पलकों में ही थम जाता है, पता नहीं क्यों रुखसार में उतरता ही नहीं। लुक्का छुप्पी खेलने की तुम्हारी पुरानी आदत अभी भी बरकरार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ करती थी। शायद गर्म हवा का ही एक झोंका था जो एक साल पहले यहीं से गुजरा था। जमी पर लिखी कुछ पुरानी कहानी मिटा गया, कुछ नई दास्तां लिख गया फलक में, कुछ नई दास्तां लिख गया फलक में।

ओम से हुई पांचों तत्वों की उत्पत्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।

मैं हूँ विशाल आकाश, असीमता ही मेरा गुण, भरता अपने में उच्च विचार, रखो हमेशा स्वच्छ मुझे, करो सब मिलकर एक काम, अच्छा सोचो अच्छा सुनो और मुख से लो अच्छे नाम, होगी बरसा प्रभु कृपा की, डर की ना होगी कोई पुकार, मुझे रखोगे अगर स्वच्छ सुपोषित तो हर लूंगा मैं सब विकार, तो हर लूंगा मैं सब विकार।

समस्त जगत की प्राण वायु झुलसाने वाली गर्मी में वातावरण को मैं शीतल बनाऊं, ना करो मुझे प्रदूषित। अगर चाहते हो खुशहाल जीवन तो चलाओ वृक्षारोपण अभियान। गुण है मेरा शीतलता, जीवन देना ही मेरा काम।

मैं हूँ तेजोमय प्रकाशमय, मेरी है अमित पहचान, अंधकार है शत्रु मेरा, ये डर जाए देख मान, प्रकाश ही है मेरा जीवन, मृत्यु है अंधकार, मैं देता ऊर्जा सबको, प्रसन्नता देना मेरा व्यवहार, देवताओं तक पहुंचाता मैं तुम्हारे यज्ञ विचार, करो सदुपयोग मेरा मानव, ताकि जीवन बने खुशहाल, ताकि जीवन बने खुशहाल।

मैं हूँ जल, सेवा है मेरा धर्म, निर्मल है मेरा मन, शीतलता देना मेरा कर्म, रखिए जलीय चक्र संतुलित, मुझे ना होने दो प्रदूषित, करो मेरा सम्मान मानव, मैं दूंगा तुम्हें जीवन अतुलित। साई ने चलाकर जल अभियान, दिया मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान, दिया मेरे महत्व का दिव्य प्रज्ञान।

0: वहन करती मैं भार समस्त सृष्टि का, मुझे ही कहते हैं धरा। करो समर्पित जीवन अपना, मैं ही हूँ भू भूमि धरा वसुंधरा। न मांगू मैं मानव तुझसे कुछ भी, पर तू ना कर मेरा तिरस्कार। कर सेवा मेरी माँ की तरह, क्योंकि मैं ही देती तुझे ढेर सारा प्यार। मत भूल तो मानव, भारी और ऊंचे पर्वत भी विश्राम मुझी पर पाते हैं। लंबी और बलपति नदियाँ मुझ पर ही होकर बहती हैं। ऊंची मीनारे विशाल भवन सभी खड़े हैं मेरे ऊपर। जीवनदायी फसलें भी सब उगी हुई है मेरे ऊपर। और ये क्या आज मेरी ऐसी अवस्था, जो तो पूछता है मुझे तो कर रक्षा मेरे इस प्रदूषण से। रख मुझे स्वच्छ सुशोभित लदी हुई पुष्पों फलों से, लदी हुई पुष्पों फलों से।
1: पर ये क्या मानव सृष्टि का सरताज अपने मानवीय मूल्यों सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा को भूलता जा रहा है। पंच तत्वों का महत्व, इनकी पवित्रता एवं स्वच्छता पुरातन काल से चली आ रही है। इनकी महत्वता का वेदों में भी उल्लेख है, शास्त्र में भी इनकी व्याख्या है। माना ऋषि मुनियों भी देव तुल्य इन पांच तत्वों को निस्वार्थ भाव से की इनकी आराधना और सेवा, फैलाया चारों दिशाओं में इनकी महिमा को। पंच तत्वों का संबंध सिर्फ प्रकृति से ही नहीं, अपितु हमारे शरीर से भी है। हमारा शरीर इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश का गुण है शब्द, शब्द सुनते हम कानों से। वायु का गुण है स्पर्श, और स्पर्श करते हम त्वचा से। अग्नि का गुण है शब्द स्पर्श और रूप, जो देखते हम नेत्रों से। जल का गुण है शब्द स्पर्श रूप और रस, जिसका पान करते हम जीवा से। पृथ्वी है परिपूर्ण इन पांच तत्वों से, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जिसका अनुभव करते हम नासिका से। कितना सुंदर संबंध इन पांच तत्वों का हमारे शरीर से। पर ये क्या कलयुग के प्रबल प्रभाव से, कलयुग के प्रबल प्रभाव से।

0: मैं हूँ कलियुग, सत्य त्रेता द्वापर युग के बाद आज संपूर्ण संसार में मेरा ही राज है। समय समय पर करता हूँ मैं अपना ही बोध। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल और पृथ्वी सब मेरे ही है सेवक। ये मानव मेरी कठपुतली है, इनकी इच्छाएं मेरे हाथ में, मैं ही छाया चारों ओर, मुझसे ही जुड़ी है इनकी हर बात।
1: अब समझो आप, प्राकृतिक आपदाओं का कारण है मानव का लालसा, स्वार्थ और तृष्णा। अगर रखता मानव खुद पर संयम, तो पृथ्वी पर ना होती भौगोलिक उष्णता, जलवायु परिवर्तन और युद्ध।

0: मेरा तो दम घुटा जा रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही। युद्ध से सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। कहाँ जाएं? चारों तरफ धुआं धुआं, आग की लपटें, बड़ी बड़ी मंजिलें गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। मुझे प्यास लग रही है, पानी भी पीने लायक नहीं है। रासायनिक पदार्थों से पानी भी प्रदूषित हो गया है। अब हम कहाँ जाएं?
1: क्या बात है पुत्र, इतने परेशान क्यों हो?
0: क्या बताएं महाराज, इस पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया है।
1: शांत हो वश, शांत हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान मैं बताता हूँ। ये सब मनुष्य के कर्मों का ही फल है। मानवता का अगर करता पालन, भरा हृदय होता प्रेम और करुणा से,

भगवत सत्ता पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, जिसका अनुभव हम अपने चारों तरफ करते हैं, चेतन शक्ति सब प्राणियों में है, तभी हम कहते हैं कण कण में भगवान हैं।

सत्य ने ही अंतरिक्ष में पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के प्रताप से ही सूर्य है। सत्य के कारण ही वायु प्रवाहित होती है। अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं। वही परम सत्य श्री सत्य साई अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब हम पंच तत्वों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक अलौकिक प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। यह हमें वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त करने में सहायता करता है।

महाराज, अब आया हमारी समझ में प्रकृति का गुण ज्ञान। लेते हैं हम सब संकल्प, करेंगे ना तत्व को दूषित और करेंगे इनका संरक्षण और सम्मान। यही होगा भगवान श्री सत्य साई के प्रति हमारा प्रेम निवेदन।

शायद गर्म हवा का एक झोंका था जो एक साल पहले यहीं से गुजरा था। जमी पर लिखी कुछ पुरानी कहानी मिटा गया, कुछ नई दास्तां लिख गया फलक में, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ करती थी। शायद गर्म हवा का एक झोंका था। आज भी हर सुबह सूरज चला आता है तेरे आंगन में रोशनी मांगने, बारिश आज भी गुनगुनाती है इन्हीं शीशों के मुंडेरों पर। रोज जहां तुम बैठते हो आज भी वक्त की शाख से टूटे शिकायतों की सूखी पत्तियां हटाकर दुआओं की ताजी पंखुड़ियां छोड़ जाते हैं आज भी। आज लोग कहते हैं तुम आराम कर रहे हो यहां, संगमरमर की सफेद चादर ओढ़े तुम आराम कर रहे हो यहां। रातें आती हैं तो उसी पत्थर पर चांद पिघलकर यूं फैल जाता है जैसे जाड़े में ओस की बूंदे फूलों के दामन पर बैठ गए हो। आज भी वहीं बैठकर मैं सितारों के बीच खोई पगडंडी ढूंढता रहता हूं सपनों के शहर पहुंचने के लिए। आज भी जब तुम याद आते हो आंसू का दरिया पलकों में ही थम जाता है, पता नहीं क्यों रुखसार में उतरता ही नहीं। लुक्का छुप्पी खेलने की तुम्हारी पुरानी आदत अभी भी बरकरार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले हुआ करती थी। शायद गर्म हवा का ही एक झोंका था जो एक साल पहले यहीं से गुजरा था। जमी पर लिखी कुछ पुरानी कहानी मिटा गया, कुछ नई दास्तां लिख गया फलक में, कुछ नई दास्तां लिख गया फलक में।